आप रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य वार सिख्य संगरो, दुष्ट जिते उठवा दुध पाता, सकल मलेश करो रणकाता।

कृपा दृष्ट तन जाय न हरियो ताके ताप तनक मोह हरियो ताके ताप तनक मैं हरियो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास वै सके न कोई।

नित्य नित्य रख उरदारो, तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए, तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।

सो ये सिलेक्शन ऑफ डेथ है, मौत की पहचान कर लेनी, ये भी परम जीवन है। नहीं तो आदमी ने पता नहीं होता, जन्म का सारे ने पता होता, पहला डॉक्टर भी दस देंगे भी इस दिन बालक जन्म लेगा, जीव धरती ते आएगा, एंड का नहीं किसी को पता, अंत का नहीं पता। वैसे तो जन्म मरण दोनों वाहिगुरु ने अपने हाथ च ही रखे हुए हैं, कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए। सानू नहीं पता सी किस तरह मरना है, साड़ी मौत किदा होनी, क्या जाना, किव मरेंगे, कैसा मरना होए, किसी नू नहीं पता। भी मैं मंजी ते पै के बीमार होके संसार तो रुखसत होना है, जां किते सड़क हादसे विच कोई एक्सीडेंट दे विच मेरी मौत हो जानी है, जां कोई हादसा होएगा किसी जगह ते, कोई ऐसा भाणा वरत जाए, कोई फायरिंग हो जाए, किसी नू की पता है। बंदा घरों निकलिया होंदा है ते पिछों खबर आ जाती भी वह तो अकाल चलाना कर गया बंदा। मरना सच है, मरना सच, जीवना झूठ। तो जिन्हें मौत की पहचान नहीं की, गुरु कहिंदे उहदा जीवन भी किसी काम का नहीं। जे साहिब मनो ना विसरै तो सहला मरना होए। तो जिन्हें मौत की पहचान कर ली होंदी है उन्हें पता होंदा है कि मैं हरी दे द्वार ते मरांगा, मरों तो हर के द्वार मत अर पूछ।

एक शब्द प्रिय भैणा वालों हुक्म है, गुरियो दिखायो लोए ना, ईतें ऊतें घट घट घट घट, तू ही मोहना। और इस तो बाद एक शब्द होर मंग कीती है, दूरों देख डंडौत कर छड़ सिंघासन हर जी आए। तो दो शब्द मैं पढ़ांगा, उस तो बाद फिर कीर्तन की समाप्ति है। बहुत शुक्रगुजार हाँ ये दोनों बच्चियां वायलन देते, बीबी इशमीत कौर जी जो कि बड़ा खूबसूरत वायलन बजाते ने, मुश्किल सा जाए, मैं भी ट्राई कर रहा एक साल तो कोशिश कर रहा, तो इन्होंने गुरु साहब की बड़ी कृपा है। अच्छे उस्ताद हैं प्रोफेसर दलबीर सिंह जी के कोलों इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और तुहाडी नज़र लैण वास्ते आशीर्वाद लैण वास्ते आउंदे ने। दूसरी बेटी स्नेहा कौर ये दिलबरबा से संगत करती है, भी बहुत सोहना दिलबा बजाती है, बड़ी सोहनी आवाज़ इन्हों सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिश की है, बड़ा सोहना कीर्तन भी करते हैं, तो इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि साडे नाल संगत करते हैं। हमेशा ही असी जो इसे दीवान कर आने तो ये बच्चिया दोनों ही साडे नाल संगत कर दियां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह इन्हों की कला में होर निखार बख्शिश करे, बुलंदी बख्शिश करे, और इन्हों चढ़ती कला सतगुरु जी प्रदान करे।

जीवते एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मुहूर्त अजुनी सहबन दुर्प्रसाद जप आद सच जगाद सच हैपी सच नानक होसी भी सच वाह गुरू।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

साहिब जी गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माय मिटावो सिमरो जास बसमर एक नाम जपत अगंत अनेक वेद प्राण सिमर सोदाखर किन्ने राम नाम के आखिर किनका एक जस जीव सावे ताकि महिमा गनी नावे कांखी एक दर्श तुहारो नानक उनसंग मोहे उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्व नाम से प्रभ के सिमरन दुख जम नसे प्रभ के सिमरन काल पर हरे प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कश बिघन न लागे प्रभ के सिमरन अंधन जागे प्रभ के सिमरन पौ ना व्यापे प्रभ के सिमरन दुख न संतापे प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन रिद सिद नौ निद प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ के सिमरन जपता पूजा प्रभ के सिमरन बिनसे दूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ के सिमरन दरगे मानी प्रभ के सिमरन हो सो भला प्रभ के सिमरन सोहल भला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक थाके लागो पाए प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा प्रभ के सिमरन उदरे मूचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभ के सिमरन सबके सुजे प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माए समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से पदवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा विनाशी सिमरनते लागे जने आप दयाला नान जन की मंगेर वाला प्रभ को सिमरे से पर उपकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख विहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नान सिमरन पूरे भाग प्रभ के सिमरन कार्ज पूरे प्रभ के सिमरन कबू न झूरे प्रभ के सिमरन हर गुण बानी प्रभ के सिमरन सह समानी प्रभ के सिमरन नेचल आसन प्रभ के सिमरन कमल विगासन प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरे से जन जन को प्रभ में आ नान तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रटाए हर सिमरन लग वेद उपाय हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमरन हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन में आप नकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन।

श्लोक आगम गान पार सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता सा जिना की आचर्य कथा अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत साध संग मल संगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब ओतन मेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संगे को ऊपर जतन साध के महिमा बढ़ने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी साध के संग उच्चर मिले साध के संग सदा प्रभुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतू तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कैसा महापुनीत साध संग कैसे नहीं बैर साध के संग न बिगा पैर साध के संग नाई को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाई हो ताप साध के संग तजे सव्या व्यापे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बने आई साध के संग न कबू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बसद गोचर लहे साधु के संग अजर सह साध के संग बसे थान उचे साधु के संग महल पूछे साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब कुल उदारे साध संग साजन मीर कुटम नितारे साधु के संग सोतन पावे जिस तंते सको बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सुवा सुरदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सर्व सफल जन्म साध के संग नहीं किस काल दर्शन पीड़ित होतने आल साध के संग कलुक धरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यावा सुहेला साध संग विचरत तर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न मिरता जावे पार ब्रह्म साध हृद बसे नान उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुंगाओ साध के संग नवंते विसरे साध संग सर्प निस्तरे साध के संग लगे प्रमीठा साधु का संग घट घट डीठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संग गात पे ही हमारी साध के संग मिटे सब रोग नान साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने ते तब ख्याने साध की उपमा देव गुण ते दूर साध की उपमा रे भरपूर साध की शोभा का नाहीं अंत साध की शोभा सा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूंचते ऊंची साध की शोभा साध बने आई नान साध प्रभ भेद ना पाए श्लोक मन साचा मुख साचा सोए उन्न पेखे किस बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कह दिश समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान

कव होय पंडित करे व्याख्यान कवु मोहन धारी लावे ध्यान कवु तर तीर्थ स्नान कवु सिद्ध साधक मुख ज्ञान कवु कीट हस्त पतंग हुए जिया आनक जोन परमे परमे।

गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर मान सो नर्क पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो अनुबंध सोवत विष्टा का जानते आपस को कर्म बंद कहावे जन्म मरे बो जो परमावे तान भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नान किया मुक्ता के सुख भावे तनवंता होए कर कृपावे त्रिंसमान के संग न जावे बो लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सावते आप जाने बलवंत किरमे होए जाए पसमंद किसे ना बदे आप अहंकारे धर्म राय तिस करे खुआरे गुरु प्रसाद जाका मिटे मान सो जन नानक दर गए प्रवान कोट कर्म करे अवतारे सन पावे सगले बिरतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं दरवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकना आवे सर्व की रेन जाका मनोए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको उसको नाई कोए जब वे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब धारे को बैरी मी तब लग निचल नाई चीत जब लग मोह मगन समाए तब लग धर्म रहे देश जाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनंग भो बिख्या के करे ना तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुमन में होर्त बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बुढ़भागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावने आपे आप सदा सदा नानक कर जाप कर्ण करावन करने हार इसके हाथ काम विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किस किन्नो सो अपने रंग सब ते दूर सबू के संग बुझे देखे करे विवेक

सुखोए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न लागे कोए उस्तत मन में करन कार कर मन मेरे सद व्यवहार।

जाके संग तरे संसार जनका सेव सो बड़ भागी जन के संग एक लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नान फल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है बे सच नानक होसी पै सच अष्टपदी। चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवधार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जा सुनता भूजन हार को सत सब होए नान सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या कन करावन तिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन पुरटाया। पैते निरपो ए बसाना जिते उपजा तिसमाय समाना बस्त मायले बस्त कटाई ताको भिन न कहना जाई बूझे बूझण हार विवेक नारायण मिले नानकेक। ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे नंकारा सो सेवक जे दया प्रभ धारे नानक सो सेवक सास सास समारे। अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सरबर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राखे ताकि गतमित को न लखे। प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैदेश पटाया। निकी कीरी में कल राखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे जिसका सास न काट दे आप ताको राख दे कर हाथ मानस जतन करत भव भात जिसके करता मिर्थे जात। मारे न राखे अब न कोहे सब जी आका राखा सोहे काहे सोच करे रे प्राणी जपना।

जब अपनी शोभा अपने संग मनाए तब कवन माए बाप मित्र सुत भाए जय सर्व कलाया पे प्रवीण तय भेद देव का कहु चीन। जब आपने आप उधारे तो सगन अब सगन का हम विचारे जय आपनू चा अपना मनेरा तय कौन ठाकर कौन कही है चेहरा विष्णु विष्णु रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय शल शेद भेद समाया हुआ किसे व्याप्त माया। आप को आपे आदेश दै गुण का नाई प्रवेश जय कह एक एक भवंता दै कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपने आप पति आरा दै कौन कदे कौन सुनने आरा बहु बेअंत उचते ऊंचा नानक आपस को आपे बहुचा। जय आप रचे प्रपंचकार तय गुण में कीनो विस्तार पापुन तय पे कहावत को नरको सुरग पंचाव दयाल जाल माया जंजाल हमे मोह परम पे पार दुख सुख मान अपमान प्रकार की अभिख्यान। आपन खेल आप कर देखा खेल संकोच तो नानक कह जय अवगत भगत तह आप जय पसरे पसार संत प्रताप। दोह पाक आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे नंचोज आपे रसभोगन निर्जोग जिस भावे तिस आप

जाए, तिस्ते दुर्गा को जाए, उभरे राखण आरत आए, निरभउ जपे सगल भउ मिटे, प्रकृपा दे प्राणी छुटे, जिस प्रभु राखे तिस नाहीं दुख, नाम जपत मनो सुख।

दर्शन भेख दो दृशिष्ट चंद कमल जाके अनूप सबल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सोहोत न्याल ता कह निकट नावद काल अमर पै अमरावत पाया सासंग नानक हर त्याया शलोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपदी संत संग अंतर पवीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक घट माह अनक रंग नाना दिष्टाए नौन दे मृत प्रभु का नाम दे में इसका विश्राम सुन समाधान तैनाद कह न जाए चर्ज समाद तिन देखिया जजाब दिखाए नान तिजन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत घट घट व्यापरिया भगवंत धरण माए आकाश प्याल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन पानी बे संतर माए चार कुंड दै दिशे समाए तिस्ते भिन्न कोठाओ गुर प्रसाद नान सुख पाओ वेद प्राण सिमरत में देख सचे सून खतर में एक बाणी प्रभु की सबको बोले आ बडोल कबूंडोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई है गुणे मोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत हार्यो स्वामी ओत बोत गुर प्रसाद परम का नाश नान तिन में ओसा संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने शुभ वचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकिए रहत सत वचन साधु सब कैद जो जो होए सोई सुखमाने कर्ण करावन हार पर जाने अंतर बसे बार भी ओही नान दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस भाव ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक अंकार अंक कला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नान तिजन आप बुझाए सरभूत आप बरतारा सर्वनैन आप पेखन हारा सगल समग्री जाका तना आपन जसा भी सुना आपन जाने खेल मनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सब कह मद अलिप्त हो रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नान जा पावे ता ले समाए इसते हो सुनाई बुरा उरे कहो किने कुछ करा आप ला कर दूधा निकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी समसाच उदबोध आपन संगराज ताकि गदमित कही न जाए दूसर होए तसो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक जान

सिमर नाम बारंबार। नानक जी का आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाले रतन संत कुमावत हो दुधार आपदर लोका निस्तार सबल जीवन सबलता का संग जाके मन लागा रंग। जय जय शब्द नाथ वाजे सुन सुन अंध करे प्रगवाजे पर गोपाल महात के माथे नानक उदरे तिनके साथे सन जोग सुन सुन नी आए कर कृपा प्रभ्या मिलाए मिट गए बैर पे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जाल विकार तेरे ते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभदारी नानक ने भी खेप मारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान का गरचीत।

अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेस। भगत ज्ञान दया भंडारण कड़कड़ वज हनाद आप नाथ नाथी सब जाके रिद्ध सिद्ध अवरासाद। संजोग बिजोग तो कार चलाव है लिखे आव है भाग। आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत ब्याही तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाई दी बाण। जिब तिस भाव है तिव चलाव है जिब हो वह फरमान। ओह विख ओना नजर न आव बहुत हो बेडान। आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको बेस। आसन लोए लोए भंडार जो कुछ पाया सोई कावार।

उन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आ जान बाहु एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आ जिज नबात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आ ढीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तो प्रसाद करनाल्या है अरकाल्या है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब अबारन है त्रित के धरन है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्बू पर है सर्बू कर है सर्वपास्य है सर्वनास्य है करुणा कर है बस्वम पर है बस्वर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करना कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है कर्ण कृत है अकृता कृत है धरणी तरत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है आजवा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है बसुम पर है करनाल्या है नृपनायक है सर्व पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलुंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग परे आत छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसूं तामसूं शांत रूपे नमो परम तत्तु अतत्तु स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादू बपूते कलंकर रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलह अपह अभ अपू अजु अनास अकास अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मु अपर्मु अगंजे अलेखे भुजंग परे आत छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामु बैपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मु प्रणासे स्वधर्मु बैपूते सदा सचदा नंद सतरू प्रणासी करिमल कनिंदा समस्तल निवासी अजैब बैपूते गजैब गनीमे हरियं करियं करिमल रहीमे चतर चक्र वर्ते चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालु प्रणासी दयालु स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बैपूते दोकालु प्रणासी दयालु स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बैपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सदान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप अतंग सरंग सवारे कोड़ तरंग करंग से कूदत पौन के गौन को जात नवारे भारी भजान के भूप भली बिदन्याबत शेष न जात बिचारे इते भय तो कहाँ पय भूपत अंत को नंग ही पाए पधारे जेत फिर सब देश

दसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूप तो कौन गन नहीं जात विचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख भेद परान कतेब करान जमीन जवान सवान के पिख पौन आहार जते जत धार सब सुविचार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख शुद्ध सपाह दुरंत दुभासो साध सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर ममासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान नदान चलेंगे भीर अपार बड़े बरे हर अवचारा सार की तार पछैया तोर तो देश मलिंद ममासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सब को सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन पर तापन भाड़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फेरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातब जौन त्रिलोको राज करेंगे कोड़ इशनान गजात गदान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास भरेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहात फिरो लिये साध समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो वास कियो बखियान सो बैठ कह सही ऐसे सुबह सुबतायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लपाहन पूज तरे सर काहू लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पछा को शीस नवायो को बतान को पूजत है बस को मुरतान को पूजन तहायो कुर क्रिया रुज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूजत है बस को मृतान को पूजन तहायो कुर क्रिया रुज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कव्यो वाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवा तुम कावो आप हाथ द मोहे बचावो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सवा करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया साबरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तो मैं चाड़ कोई अबर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारिया है आप हाथ दा मुझे अबरिया मरण काल का त्रास नवरिया हूँ जो सदा हमारे पच्छा सरिया तुझ करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर दशकंता काल पाई ब्रह्मा बबतरा काल पाई शिवजू अवतरा काल पाई कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब की ओ वेदराज ब्रह्मा जूती ओ जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दी हो सतरन को पल मोह बद की हो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कटकट के पटपट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तर्त तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं।
जेते बदन श्रेठ सब तहर आप आपनी भूज अचार है तुम सब ही ते रहत नरालम जानत भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभता का मूड अचार तेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपा हन हनुमान तो महामूड कछ भेद न जान तो महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीन तो नह पैब आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह देती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राभ कही भूपा अंडज जेर जसे तजकीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हो बैठा कहूं समट प्यो शंकर अकैठा सिगरी सरठ दखाई अचम भव आद जगाद स्वरूप स्यम भव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख वार असख संघरो दुष्ट जिते उठबत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अज तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हो मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट न आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृढ़ तन जाहिन हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा स्व सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा कान फांस ते ताहि बारा जिन नर नाम तहारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दयाले हो बारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किल बिग सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अतुजा पै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न दिस व्यापत कोई अड़ल सुन गोंग जो जाहे सुरस न पावई सुन मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकट ना तिन नरके रह हो जो जाकी एक बार चौपी को कह चौपई संबर सत्रह सहस पिणिज अर्ध सहस फुन तीन कहिज भाद्रव सुधे अष्टमी रब बारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण करान अनेक है मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहे हम एक न जाने श्री सपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ कहू तुहारो द्वार वाहे गह की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ कहू तुहारो द्वार वाहे गह की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरुता पाया सहज सेती मन बचिया बाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दो तगाव हरि केरा मन जने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरिया तू सदा रहू हर नाले हर नार रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सुख मनो बसारे कहा नानक मन मेरे सदा रहू हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे का है नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुआईया करसान सुख मनाए बसिया जिन इच्छा सब बजाइया सदा कुरबान किता गुरु बेटो जिस दिया ए बड़ियाइया का है नानक सुनो संतो शब्द तुरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार हो वाजे पंच शब्द तुत घर सुभागा घर सुभागा शब्द वाजे कला जित कर तहरिया पंच दूत तुर वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुर जन को से नाम हर कह लागे कहा नानक तै सुख हुआ तुत कर अनहद वाजे साची लिवै मन देह न माणी लिवै वाजो क्या करे बेचारिया दुर्बा समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया इस ना होर था ओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै वाजो क्या करे बेचारिया
आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल बिख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानके आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावे पावे ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे बेचार या एक भरम भूले फिर है दह देसिक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भय नरमल जिन्ना भाणा पावे कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यार हुआ कथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वार पाई है तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन पाई है हुक्म नहु गुरु के रागावो सची बाणी कह नानक सुनो संत हो कथ हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जने इत भरम भुलाया मैं त मोहनी तिने की जन ठगोली पाईया करवान किता तिसै विटो जन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले हो कुटंब तू जे देखदा चला नाही तेरा नाले साथ तेरा चला नाही तिस नाल क्यों चुतलाइया ऐसा कम मुले ना खीचा जित अंत पछोताइया सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले आगमे अगोचरा तेरा अंत न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है जी जन सब खेल तेरा क्या को आख बखान आखे त वेख है सब तू है जिन जगत पाया कह नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया सौर नार मोन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन बसाया जी जन सब तो दे पाए कवेक परसन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनो आप तुठा तन अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल नराली चल नराली भगतां के रे बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो देखी वल हो निकी त मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर बासना समाणी कह नानक चाल भगतां जुग हो जुग नराली ज्यो तू चलाए तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव जिव तू चलाए तिव चलै जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे जिसनु कथा सुनाए अपने इसे गुरुद्वारा सुख पावे कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावे तिवै चलावे हो सोहिला शब्द सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया एहो तिनका मन बसया जन धुरों लिखिया आया एक फिर कनेरे करह गल्ला गले किने न पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्हें हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्हें त्याया पवित माता पिता कुटुंब सैंत सो पवित संगत सवाइया कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिन्हें मन बसाया कह नानक से पवित जिन्हें गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै बिन सहज सहसा न जाए नह जाए सहसा कित संयम रहे कर्म कमाए सहसा जियो मलीन है कर संयम धोता जाए मन तो बहु शब्द लग हो वर्ष रहो चितलाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा बजाए जियो मैले बहरो निर्मल जियो तो मैले तिन्नी जन्म जूह हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनो बेसारिया बेदा मह नाम उत्तम सो सुनह नाही फिर ज्यो बेता लिया कह नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिन जन्म जुआ हारिया जियो निर्मल बहरो निर्मल बहरो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचा नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिन खटिया भले से बन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै होव त सनमुख सिख कोई जियो रह गुरु नाले गुर के चन हृदय ते आई अंतर आत्मा समाले आप छड़ सदा रह पर न गुर बिन अवर न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सर गुर मुक्त न पावा पावे मुक्त न होर था कोई पुछो बबे किया जाए अनेक जूनी भरमे आवे बिन सर गुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सर गुर मुक्त न पाए
ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਰਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪੋ ਸਾਰ ਗੋਪਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਹਾਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਚਿਰਜਨ ਕਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਹੂ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗੈ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਹੂ, ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਉ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਹੂ, ਸਿਵ ਸਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਈ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ, ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਕਿਸਿਓ ਲਿਵਲਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਈ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਭੁਨ ਪਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਿਹ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਹਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਦ ਪਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਹਾਣੀ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਐ, ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਬਸਾਰੀ ਹੈ ਵਡਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵੇ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਕਹਿ ਨਾਨਕੇ ਵਡਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਬਸਾਰੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਬਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਹਰੇ ਆਪ ਮੁੱਲ ਕੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸ ਵਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਲਾਈ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੈ, ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲ ਕਹਿ, ਭਾਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੈ ਪਾਈ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮੁਨਜਾਰਾ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮੁਨਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਹੋ ਜੀ ਇਹੋ ਲਾਹ ਕਟਹੋ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹੋ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹਿ, ਨਾਨਕਾ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਏ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤਾ ਜੇ ਚਿਰ ਹਰਸ ਪੱਲੈ ਨਾ ਪਾਏ, ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੈ ਪੀਆ ਹਰਸ ਬਹੁਣ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲੱਗ ਆਏ, ਇਹੋ ਹਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸਾ ਵਿਸਰੇ ਜਾ ਹਰ ਬਸਾ ਮਨ ਆਏ, ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਾਏ ਜਗ ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਚਾਓ ਭਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰਜਾ ਪਾਏ, ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ, ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿਆ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚੁਤ ਲਾਇਆ, ਏ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਨਬਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਨਬਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਬਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ, ਸੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਸੱਚ ਅਲੱਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਬਹੁ ਸੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੋਪਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕਹਿ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਭਾਵਨੀ ਕਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਹਿ ਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਓ ਨਾਵ ਨਿਧ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀਓ ਗੋਪਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕਹਿ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ,
ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚਾ ਕਰ ਗਾਵੋ ਗਾਵਤ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚਾ ਜਿਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹਿ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਜਾ ਤੁਰ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾ ਭਜਾਵਹਿ ਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਧਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬੈਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ

सो सिमरहो निर्वाणी। काय कमंडल कापड़ी आरे आठ सठ काय फिराही। बदत तरलोचन।

नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे आपे नजर करे, नानक कामण कंते भावै आपे ही रावे। तिलंग महला पहला। या नड़िए मानड़ा काय करे, आ प्रणय कर हर रंगो की ना माने। सौ नेड़े तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे, पह किया दे सलाइया नैनी।

की माती माया माए समाणी इन्नी बाती सो पाई है नाही पही कामन ए आणी जाए पुछो सुहागणी है जो किश करे सो भला कर मानी है हिकमत हुकम चुकाई है जाके प्रेम पदार्थ पाई है तहु चरणी चित लाई है सहो कह सो की जय तन मनु दीजे ऐसा परमल लाइए एवक।

झूठ कहो क्या गणी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे तुरमतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जीतिया ऐसा बाजी संसार न चेते हरनामा खिन में बिनसे सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहो सावेला चित न आवे जित आए कंटक काल ग्रस है तिस नानक ले छाई जिस कृपा कर हिरदय वस है तिलंग महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद खाक नूर कर दंग आलम दुनियाए आसमान जिमी दरख्त आव पैदाइश खुदाई बंदे चश्म दी दंग फनाए दुनिया मुर्दार खुरदनी गाफल हवाए रहाओ गैवान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराए दिल कब्ज कब्जा का दरो दो जक सजाए वली नियामत।

जब अज़राइल बस्तनी तब थी करे विदाई हवाल मालूम कर दंग पाक अल्लाह बुगो नानक अरदास पीस दरवेश बंदा तिलंग कर दूजा महला पंजवां।

साध नानक गुण गाहे। जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए। जिन जपिया तिस को बलिहार, तिस कै संग तरै संसार। कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की बांछो तूर। तिलंग महला पंजवा,

अंधियारे में दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए दिन सरैन जे तुद अरादे सो क्यों दोजक जाए अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार गुण है उसके सगल आफो तेरे जन दे खेंदी दार दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाओ गुर मिल नानक बूझिया सदा एक सगाओ तिलंग महला पंजवा मीरा दाना दिल सोच मुहब्बते मन तन वसै ससाहा बंदी मोच रहाओ दीद ने दीदार साहेब कश नहीं इसका मोल पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा अतोल।

तिलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन किया तिन देखिया क्या कही है रे भाई आपे जाने करे आप जिन वाड़ी है लाई राय सा प्यारी का राय सा जित सदा सुख होई रहाओ जिन रंग कंत नरावया सा पछोरे ताणी हाथ पछोड़े तिरतने जब रहन विहानी पछोतावा ना मिले जब चूकेगी सारी ता फिर प्यारा रावी है जब आवेगी वारी कंत लिया सुहागणी मैं ते वदवी इह से गुण मुझे नया बणी कह जी दोस तरे जिनी सखी सरावया तिन पूछोगी जाए पाए लगों बेनती करो लियोगी पंथ बताए हुक्म पछाणे नानका पौ चंदन लावे गुण कामन कामन करे तो प्यारे को पावे जो दिल मिलिया सो मिल रहिया मिलिया कही अरे सोई जे बो तेरा लुचिए बाती मेल न होई तात मिले पुन तात को लिव लिवे को तावे गुर प्रसादी जानिए तो अन पौ पावे पाना वाड़ी होए घर खर सार न जाने रसिया होवे मुस्क का तब मूल पछाणे अप्यो पीवे सो नानका परम परम समावे सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर पाम दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मन्या तिन घुम घुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हवारी जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम त्याई दे ते जन परवाना तिन विटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे

साई गल चंगी तिलंग महला नौवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद विहात है फूटे कट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काहे ना गावही मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै नह मर्म पछाना

निर्भय पद पावे तिलंग महला नवा जागलिहो रे मना जागलिहो कहां गाफल सोया जो तन उपजा संग ही सोपी संग हो न होया रहो मात पिता सुत बंद जन हित जास्यो कीना जियो छुटियो जब देते डार अगन में दीना जीवत लो व्यवहार है जाको तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुफन समानो तिलंग महला नौवा हार जास रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर बीतो जात है कहो मान ले मेरो राव संपत रथ धन राज स्यों अत निहो लगायो काल फा जब गढ़ परी सब भयो परायो जान बूझ के बावरे तै काज बिगारियो पाप करत सुकच्यो नहीं न गर्बन विवारियो जे बिदगुर उपदेसिया सो सुन रे भाई नानक कहत पुकार कै गहो प्रभ शरणाई तिलंग बाणी भगता की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेद कतेव इफतरा भाई दिल का फिक्र न जाए टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाई बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे ए जो दुनिया सेर मिला दस्तंगीरी नाही राव द्रोग पर पड़ खुशी होए बे खबर बाद बकाहे हक सच खालक खलक मियाने स्याम मूरत नाहे आसमान मियाने लहंग दरिया गुसल कर दन बूद कर फकर दायम लाए चश्मे जै

देर तक जो कह रही है वट एवर द गुरबाणी इज सेइंग इफ यू विल नॉट डू इट. गुरबाणी कहे सेवक जन मन है, जिनी देर तक मनेगा नहीं, मने की गत कही ना जाए. केंदे जिनी देर तक मनेगा नहीं, अपनी जिंदगी दे विच उदा तुरेगा नहीं, ते फिर उन्नी देर तक बाणी ने भी असर नहीं करना गुरु प्यारियो, क्योंकि असी अपने आप नू समझे ही नहीं कि बाणी कादे वास्ते पढ़नी सी, बाणी पढ़ के आपा करना की सी. महाराज कहिंदे पढ़िया मैल ना उतरै पुछो ज्ञानिया जाए. कहिंदे सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं गुरबाणी नू पढ़ पढ़ के मैल उतरनी, जो गुरबाणी कहिंदी है वह करना पैना है. ते मन मन की गल महाराज करते बार बार, ते मन कहिंदी गल करके कहिंदे मन मेरे गुर शरण आवै ता निर्मल होए. कहिंदे जिनी देर तक गुरु की शरण च नहीं आउंदा, वी हैव टू सुरेंडर आर सैल्फ फ्रॉम इन साइड, आर माइंड हैज टू सुरेंडर. अगर असी सिमरन भी बारों बारों कर रहे हैं, बाणी भी बारों बारों पढ़ रहे हैं, उहदा भी असर नहीं होना. महाराज कहिंदे मनमुख हर हर कर सके कर थके मैल ना सकी तोए. कहिंदे उहनां दी मैल भी नहीं उतरनी, क्योंकि मालक नूं पुछ पुछ के मैल धोनी सी. अंतर मैल लगी ना जाने बारों मल मल धोवै. कहिंदे अंदर दी मैल ते इहनूं समझ नहीं आई. ही हैज नॉट रैकोगनाइज द फिल्थ ऑफ द माइंड. बारों पवित्र होई जा रहा है, बारों कर्म कांड करी जा रहा है, वक्खो वक्खरे कर्म करी जा रहा है. कहिंदे होमे दे विच करी जा रहा है. जग होमे मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए. कहिंदे होमे दे विच सारे कर्म कर रहा है, मन होमे धोती किवें ना उतरै जे सो तीर्थ ना आए. कहिंदे भावें तीर्थां ते चले जावे, उते इशनान कर लवे, गो टू द पिलग्रिमेजेस एंड टेक अ बाथ देयर, वह भी बाहर की मैल है, अंदर की मैल तावी नहीं निकलनी. बोबिद करम कमाव दे दूनी मल लागी आए. कहिंदे होर मैल सगों होर चंबड़ जानी है कि मैं ते जी पाठ करदा, मैं ते जी सिमरन करदा, मैं ते तीर्थां च नहाउंदा, उहदे नाल होमे दे नाल होर मैल चढ़ी जानी चढ़ी जानी. मैं ते अमृत वेला करदा. कहिंदे पढ़िया है मैल ना उतरै पुछो ज्ञानिया जाए. कहिंदे ज्ञानी कौन है? कहिंदे ओह ज्ञानी जिन्हां ने गुरबाणी कहे सेवक जन मन है. ओह सेवक बन के सुरेंडर करता अंदरों दी, बाहरों नहीं सिर्फ अंदरों दी. ते जिनी देर तक गुरु प्यारे हो असी अंदरों सुरेंडर नहीं करना, वह किवें करना वै? तो महाराज ने सानू तरीका दस्या जपजी साहब दे विच ही. गावीए सुनीए मन रखिए पाओ, क्योंकि जिहड़ी गेम है ना खेड, वह मन दी है. बाणी दी भी यही जुगती पढ़न दी, सिमरन दी भी आही जुगती. कहिंदे आपां मुखों गाउणा है, कन्ना तो सुनना है, प्यार दे नाल प्यार दी जुगती. जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो. अगर प्यार ही नहीं ते बाणी भी पढ़ी जा रहे हैं, सिमरन भी करी जा रहे हैं, ते मन दे विच होमे है, फिर मैल नहीं उतरनी. ते जदों गुरु साहब ने कृपा कीती, जदों सानू समझ आ गई दैट वी हैव टू चैंट फ्रॉम आर टंग लिसन फ्रॉम आर ईयर्स विद लव. कन्ना तो सुनना है, जीबा तो गाउणा है प्यार दे नाल. सरवणी सुनीए रसना गाइए हिरदे ते आइए सोए. ध्यान अपनी आवाज दे विच रखना है, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख कथ कहानी. फिर कहिंदे तन्नू तेरी जीवन तेरा सफल है, फिर तू अपने आप नू पहचान लेगा. क्योंकि शरीर मिले ही ऐसे पिछे सी, पई प्राप्त मानक देहरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया. अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम. कहिंदे वी गॉट दिस फिजिकल बॉडी सो दैट वी कैन मीट वाहिगुरु. साडे जिंदगी का परपोज ही आही है, ते असी प्यार दे नाल मालक नू जे असी चाहुंदे आ, असी मालक नू देखना है, अपनी आवाज नू सुनना है, बाणी पढ़ना है पढ़नी है, ते सुनना है. सुनिया मनिया मन कीता पाओ. ते कहिंदे ओही तीरथ है अंतरगत तीरथ मल नाओ. कहिंदे तीरथ ओही है, अंदर ही है तुहाडे तीरथ, उहदा इशनान करना है, आपां सिमरन करना है. जदों मैल उतरेगी फिर महाराज कहिंदे तू पछाण लेगा अपने आप नूं,
ਮੈਲ ਲੱਥੇ ਕੀ ਜੋ ਮਨ ਸਹਿਜ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਹੋਮੇ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ, ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਦਿਸ ਬੋਡੀ। ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਜੀ।

एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई। तीर्थ नावा जित पावा बिन पाने के नाई करी, जेते सिर पाई वेखा बिन करम के मिला।

दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तद पावे साई परिकार तू सदा सलाम निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंग रंद मुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सुरमो पाख सार असंग मोले विलाय तार कुदरत कौन

रत्नो पाए तेरे अड़सर तीर्थ नाले गावा जोत महाबल सूरा गावा खाणी चारे गावा खांड मंडलवर पंडा कर कर रखे तारे सही तनु गावा जोत पावन रत्ते तेरे भगत रसाले और कहते गावन से मैं चितना यावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब सचा सची नाई है पी हो सीधा न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाते।

जात बहार तिर सुनियार अरण मत वेद हथियार पाओ खलागन तबताओ पांडा पाओ अमृत तार कड़ी सब सचेत सार जिनको नदर

प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी किना दसवां द्वार दिखाया, तहे अनेक रूप नाओ नव निध, तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो, गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया।

जी, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबे तुम जानो हर रात जाते, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग किए हम थापे, तान तान गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चुके सब सोग संतापे, सुख अटल गुर सेवी है एहन सह सुवाय, दर्शन परसिए गुरु के जानम मरण दुख जाय, हुए सिवत खसम दी नूर अरसों

वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

सब आखो धन धन धन गुरसोई। सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई। वडियाई गुरम

नारते अवजा सर्गो जिदो सो अखद अवखद मैं भाई जहां जहां तो नदा टेके नैग टकाओ मोहे तेरे नाम अवलाम बहुत जन दे नामे की निज मत हे गॉड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिना गाय कैली पानिया बिन मीन तलफे ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा राओ जैसे गाय का

0: प्रसाद ग्रह संग सुख बसना प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्यान जोग
0: प्रसाद पाठ

0: मंडलम
1: कोड़ से जेर सूर्ण खतर
0: कई कोड़ देव दानव इंद्र शिर शतर
1: सगल समग्री अपने सूत धार
0: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार
1: कई कोड़ राजस दम साधक
0: कई कोड़ वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र
1: कई कोड़